0: क्लास तुमको फाफी
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंदी तो नाम मत आकाश के आराम पिसले तम सब तुम तो चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे ये टीम म्याना के रहे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वा ये जन के जान मंदी तो नाम मत आकाश के आराम है ये जन के रिस्क सान पा ना जब फिक्री जन मु उतनी मां ने किसी से लेन देसाना को दे मनारा कनास सेमु जान ले फिट देसाना दे फा मनारा कंटेन दे ए देमरा ना तो फिट तो सोम तांग मिरी जाने सेन जब दे दे
2: क्या ना का फिना सु फतारा कौन सा ये ले फिर ना का फिना जाने मां सुत सा उन अच्छा फर ले फिना रोक ये कर ये ना बुला चुना ये नो जाने
3: ये सुत सान ले वचने मुझे ते Saya nak tarik suit tu jenis maaf tu lecang suit tu suit sah, jadi suit suit tu nak kafina timnya nak cari tu ngata titi walasa suit jam susu tu mulalasa tu ni sendu. Saya mampai yerin aja yang zaman tu ni mampat naji rakun sih, tapi tanjat nanti tunggawan ni.
4: Karena kafina suit tu, le le ulan aja tungsa, apa ni tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan fanrin we tei teta Madagascar te sutun mitsa san ye fankerezana wazireo te mafinaritra ny ataonareo a fa tena we makafi tokoa anty losy mamitsika ity izay tena we tsy manantsaly ity izany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy